0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

बहनों और भाइयों, संगीत का सफर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में लेसन्स फ्रॉम द गीस यानी गीस पक्षियों से सीख के बारे में मैंने बात करा था। आज के एपिसोड में आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन आप सबको एक कहानी सुनाएंगे, गरुड़ पक्षी का पुनर्जन्म। इसके पहले कि हम एपिसोड शुरू करें, आइए सुनते हैं ये गीत, ये दिल ना होता बेचारा, फिल्म ज्वेल थीफ, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार एसडी बर्मन और इसे गाया है किशोर कुमार।

बहनों और भाइयों, यह एक प्रेरित कहानी है जो वर्षों से इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रसारित हुई है। यह परिवर्तन और जीने की दृढ़ संकल्प की कहानी है। इस कहानी की व्यापक अपील मानव को मोहित करने और प्रेरित करने के लिए गरुड़ की असाधारण शक्ति की बात करते हैं। हालांकि ये कहानी प्रेरक है और हमें अपनी जीवन यात्रा को प्रतिबिंबित करने का एक तरीका प्रदान कर सकती है। कहानी बस यही है, एक कहानी, ये जीविक रूप से सटीक नहीं है। आइए दोस्तों, तो सुनते हैं ये गीत मांग के साथ तुम्हारा, फिल्म नया दौर, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार ओपी नैयर, और इसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

तो हाँ बहनों और भाइयों, पक्षियों में गरुड़ का जीवन काल सबसे लंबा होता है। यह 70 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए गरुड़ को एक कठिन निर्णय लेना होगा। 40 के दशक में इसके लंबे और लचीले पंजे अब शिकार को नहीं पकड़ सकते, जो भोजन का काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कहानी को यहाँ रोकते हैं और सुनते हैं ये गीत, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

बहनों और भाइयों, गरुड़ 40 साल के बाद उसके लंबे और नोकीले चोंच मुड़ी हुई हो जाती है। इसके पुराने और भारी पंख अपने मोटे पंखों के कारण इसके छाती से चिपक जाते हैं और उड़ना मुश्किल कर देते हैं। तब गरुड़ के पास

केवल दो विकल्प रह जाते हैं, पहला मरना, दूसरा परिवर्तन की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना। तो जी हाँ दोस्तों, कहानी को फिर से यहाँ रोकते हैं और सुनते हैं ये गीत। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, फिल्म पतिता, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, और इसे गाया है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, कुछ दिनों के बाद नए पंजे, नए पंख और एक नई चोंच उगती है और गरुड़ पुनर्जन्म की एक प्रसिद्ध उड़ान लेती है और अगले 30 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ये गीत, मन डोले मेरा तन डोले, फिल्म नागिन, गीतकार राजेंद्र किशन, संगीतकार हेमंत कुमार और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

जी हाँ बहनों और भाइयों, ये कहानी हमें इस बात पर विचार करने में मदद करती है कि बदलाव की आवश्यकता क्यों है। कई बार जीवित रहने के लिए हमें परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। हमें कभी कभी पुराने यादों, आदतों और अन्य पिछली परंपराओं से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है, ताकि अतीत के बोझ से मुक्त होकर हम वर्तमान का लाभ उठा सकते हैं। यह एक अद्भुत और प्रेरक कहानी है और इसे YouTube, Facebook और Instagram पर देखा जा सकता है। यह सजा करने लायक कहानी है, लेकिन कहानी केवल एक कहानी है। तो आइए दोस्तों, अब इस सीख के साथ सुनते हैं ये गीत, धीरे धीरे चल चांद गगन में, फिल्म लव मैरिज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, और इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

तो जी हाँ बहनों और भाइयों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।